0: आठ
1: ओनली टू हैव प्योर फीलिंग विमल भावा वुड अमाउंट टू हैविंग एजुकेशन टू हैव गुड क्वालिटीज वुड कॉन्स्टिट्यूट बीइंग एजुकेटेड हैविंग इक्वालिटी एंड इक्वानिमिटी would amount to being simple. This is the path of truth which Sai tells you.